परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उस तो जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साई है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साई फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाणगे। मेहर करे जिस मेहरवान, ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान।

जे हुक्म आ गया उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा, उसनु कोई मेट नहीं सकदा। तो शेख फरीद जी, असा माया मोह दे जंजाल विच फसे हुए मनुखा नु एक जीवन दी सच्ची गल दसदे ने कि ए जीवन नाशवंत है। जे कुछ सच्चा है तां वाहिगुरु दा परम पवित्र नाम है, और सच्चे अमल चंगे अमल कीते हुए ही दरगाह दे विच कम आउणगे। कहंदे ने फरीद जी,

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। साहब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाती बूंद दे पिछे पपी पपी प्या करदा। साहब बाणी विच कहिंदे ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला लिया, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिन्हां नाम जपिया सिमरन कीता, भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू, नाम जपण वालिया नू, सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना की जाए शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे, अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा,

जे भाई सत्तां समुंदरां दे पानी दी स्याही बना ले जावे, कलम करो बन रहा है सारी जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ए मेरिया मालका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं विछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्यमर का कर कृपा मेरे दे, को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए, गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर लै जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं। पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उसको जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साई है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साई फरमाउंदे हन कि ए गुरसिख, तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाने। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास। साहिबां दा फरमान।

आपे बहुत रंगला सखिए मेरा ला। अखर ने गुरु नानक साहब दे ते अर्थ किते ने गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने। इनू कहंदे ने गुरगद्दी और एक रूप। एक रूप गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी गुरियाई दे की मैं किशमे सुनावां। तीरमलिया ने सतगुरु जी बीर ना दिती, आपने पाठ रखना सी, पांच सिख कले आख्या जिन्नी पेट आखोगे वह भी देंगे, दर्शन पेट भी तुहाडी कोलों भी देंगे और बहुत सेवा करांगे, सानू महाराज की बीर दे दिओ। असी पाठ रख के गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा अरदासा करके सिखां नू पाठ सुना के फिर वापस कर देंगे। उन्होंने मनिया ना, सगो मेहणा मारिया, जे तू गुरु है तो अपनी बाणी उचारण कर लै। ये मेहणा मारिया, सिख आए, सिखां नू वार्ता पुछी, उन्हें सारी दसी तो एक सिख रो पिया, कहन लगा महाराज उन्होंने बड़ा भैड़ा अखर आख्या है, शक कीता है तुहाडी जात ते। उन्हें आख्या जे तुसी गुरु हो तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब बना लो। महाराज उन्होंने बड़ा भैड़ा अखर आख्या है,

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनों दिन काबल वालू वद दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाना नू अपनी मौत दिसन लगी।
1: कई हजार मुल्किया कट्ठा कर शमी खान ने अपने दादे पड़दादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया।

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया। तलवारा पिड़िया
1: धरती लहू लुहान हो गई।
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे। रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पाड़ पै गया।
1: हुण महासिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंध दा पाड़ पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोकदिया रोकदिया बीबी हरशरन कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया। डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालो सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल, पहाड़िया गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजा समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई, सरदार हरि सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू इउं टकरे।

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महासिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ उते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आख्या,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

हर वक्त तेरे मन दी हरेक कामना पूरी कीती है। सेवकां वांग उस दी भगती करदा रहो अते हे दास नानक आख

मुस्कराया, हैरान रह गई दौलतां दाई, मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिखत बोलो श्री बधाई दीती से। बार आई कोठरी विचों, बधाई दीती, मैता जी वधायों,

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं तां कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नूं इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नूं मैं तां कालू नूं वधाइयां मिल रहियां हां कि अज अज बालक

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे, बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए। जिथे मोह बनिया हो, प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरु नाल विछड़िया होया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी दी लगदी, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटन विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, यह गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पल्ले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका आउंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हिड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीभा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल उहनूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चमड़े ने। इह कन्नां तों वी कमला, इह नासां तों वी कमला, अखां तों वी कमला, जीभां तों वी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों वी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना, उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही दोख तों ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पही कहाल। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिए। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तूं अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिए। वह संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल, चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां।
ਤੁਝ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਭਗਤੀ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਲ ਨਾ ਸਾਕੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ। ਹੁਣ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਝਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸੂਹੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਾਸੂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕਲ ਕੈਸੀ ਮਾਰੀ ਸੂ ਪੁੱਛੇ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਠੰਡ ਵਾਪਰਨ ਡਈ, ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੂ? ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੱਝੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੜ ਲਓ ਸੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਾ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਮਗਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਠਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾ ਇੱਧਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਗਿਆ? ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਾਦਰ ਖੁਲਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵਫਾਵੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਖੇਸ, ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦੇ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਲ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕੂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧਿਆਂ ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ,
जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी इवे पावन बाणी कहती है लोक तिकार कहे मंगत जन मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तिरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छैदा तिरकार नाल नहीं खान नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखां दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई दिनों का भुखा दा मारिया अज मैं ये फैसला कर रहा सी भी जो मिल गया खा लेना, ते मरियल जा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता सा कितने नुकरे बह के इसे नूं चब लवां, इसे नूं भुन के जिवें भी होवे इस नूं खा लवां ते अपने पेट की अग बुझा लवां। साहब कहन लगे इहनूं लंगर छकाओ सोहणे वस्त्र पुआओ। कहन लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना दोखी हो सकना, लंगर छका दिओ तुहाडी बड़ी कृपा है क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनूं शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए कहन लगे नहीं इत्थे भाई कन्हैये वर्गे बेअंत ने जिहड़े किसे नूं दुश्मन नहीं समझदे किसे नूं वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां विच रजीने मिलदे सन। साहिबां ने रुपया रोज़ दा ला दिता। कहन लगे इहनूं गुजरान मात्र रुपया रोज़ दा दिओ। कहन लगा साहब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज़ मैनूं किस गल दा बख्शदे। साहिब कहन लगे भुखां दा मारिया गरीबी दा मारिया देसों परदेस आया कमाउण वास्ते तेरे बाल बच्चियां वास्ते तेरी किरत मात्र कि महाराज मैं करांगा की। साहिब कहन लगे जो तेरा जी करदा है तैथों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया गुरु कियां रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया गुरु का डर नहीं छड्डिया सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल जूझदा ही शहीद हो गया गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया पैसे भी हो गए हुण तां निकल जाए इत्थों तेरी जात बिरादरी वालिया ने तेरे बंदियां ने वेख लिया तैनूं काफर कहणगे तैनूं दोषी करार देणगे। उह कहिंदा नहीं दोष निकल गए जीवन विचों जिसने खुदा नाल जोड़े है इन्ना परउपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया उहदियां ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया ते मैं इहनूं छड्ड के होर किहदे कोल चला जावां इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं साढ़े किन्ने ही दुख ओदी एक भुख का दुख महाराज ने दूर किया हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणा तो साढ़े किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख का की फर्ज बनता है वह सदा यह गल हिरदे च धारण करके रवे कि साहब तेरे दर तो सरदारियां पाई ने भुखा मिटिया ने माण मिले है भरम मिटे ने दूई मिटी है हिरदे नूं शांति प्राप्त हुई बड़े सुख पाए ने मेरे ते तेरी रहमत होवे ते ए होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा। बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जाण भरम निकल जाण बंदे नूं चैन आ जांदा मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

गुलाब दे फूल खिड़दे ने, जद पानी कट जावे ता फूल दे पत्ते कुमला जांदे ने। इसे तरह अज तेरे ते जवानी है, बुढ़ेपा आवेगा तेरी ये जवानी कुमला जावेगी। थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने किहड़े वेले आना।

जे पूछिए पाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कवेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है, टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता एहो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। जीरान कहंदे ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौं गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सौना है।

ताई किसे ने आके आख्या सोइना मोइना तुसी इत्थे क्यों खड़ोते हो। आख्या इत्थों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने लंघना है, सवेरे दी शाम हो गई असी खड़ोते हाँ। ता गुरु के सिख ने आख्या आके धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दूसरे रस्ते तो आके नगर विचों तां होके भी चले गए। ताई कन्ना विच फिर आवाज गूंजी, जाओ तुहानू ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। साथ संगत बोलो श्री घर आए ना नींद पौंदी है ना चैन आउंदा है, की करिए। किसे गुरु के सिख ने स्रोत पाई, जे अपने गुनाह बख्शाउणे ने ना ता आनंदपुर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे चरणा विच जा। दोनों तुर पे आनंदपुर साहिब वाल बेनती करदे होए ए

आए जदों आनंदपुर साहब दरबार विच नहीं गए, उत्थे आए जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा सोहना बाग सी, ते बाग दी सेवा कर रहा है भाई केसरा सिंह, आके चरणा विच बेनती की, भाई साहब कृपा करो, सानू ऐसा मार्ग दसो कि साढ़े कोल एक सिख दी हत्या हो गई है, जो पानी मंगदा मंगदा चलिया गया, असी उदे मूंह विच घुट पानी दा ना पाया, ते हुण असी ए अपने सिर ते पिया होया गुनाह, साडा कीता होया पाप किवें बख्शिया जावे, ते सानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन होण। भाई केसरा सिंह ने आख्या, तुसी इसे बाग दी सेवा करो, समा आएगा तुहानू धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे दर्शन भी होणगे। भाई केसरा सिंह रोज अमृत वेले आ फुलां दी सोहना एक सेरा बना के लै जांदा सी, ओ सेरा माता जीतो जी जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दरबार विच आउंदे सन तां उन्हां दे गल विच पाया करदे सन, ओ सेरा अज सोइना बोइना ने अपने आंसुआं दे नाल परोया तैयार कीता, आख्या भाई केसरा सिंह लै जा साडी बेनती, ते पातशाह नूं कहीं साडे वास्ते की हुक्म है। जदों भाई केसरा सिंह सेरा लै के आया, ऐसे प्यार नाल गुदिया होया सेरा, जिस दे एक एक फुल ते सोइना मोइना ने पता नहीं कितने कितने अथरू डेगे हैं। जदों माता जीतो जी नूं लिया दिता, जो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह दे सुपत्नी सन, लो माता जी, माता जी कहण लगे भाई केसरा सिंह अज बड़े प्यार नाल सेरा गुदिया, एडा सोहना सेरा, आख्या ये मैं नहीं गुदिया, ये कोई दो सोइना ते मोइना दनपति आए हैं, ये उन्हें गुदिया, ताही ये धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आ गए। माता जीतो जी ने सेरा साहब जी दे गल विच जदों पाया, अंतर जामी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहण लगे भाई केसरा सिंह आ बेशक उन्हां नूं जाके कह दे सोइना मोइना नूं बाग दी सेवा जरूर करन, लेकिन जदों असी बाग विच आईए तां साडे मत्थे ना लगन। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु, ओके साडे सिख ने वचन कीता है कि तुहानूं ठाकुर दर्शन नहीं देणगे। वापस आया भाई केसरा सिंह, मन बड़ा उदास है, सोइना मोइना समझ गए कि अजे हुक्म नहीं मिले, रोज नाम जपते हैं सेवा करते हैं। एक दिन रात का समय दोनों अपनी झुग्गी विच बैठे शब्द गा रहे हैं, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाव, ताईं बुआ खड़किया, बुआ खोलिया की वेख्या, माता जीतो जी खड़ोते हैं, आख्या मेरे बच्चियो फिक्र ना करो, जिस प्यार नाल तुसी गुरु घर की सेवा कर रहे हो नाम जप रहे हो, एक दिन ओ जरूर आवेगा, मेरा मन कहिंदा है जदों तुहानू कलगीधर पातशाह दे दर्शन होणगे। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। पो सतवीं दा दिन नेड़े नेड़े आ रहा है, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दा अवतार पुरब, ते सोइना मोइना ने सोहने फुल तैयार कीते के जाके साहब जी दे चरणा विच भेटा करके गुलदस्ता बना के सोना भेजांगे। एक दिन विच रह गई, अगले दिन पो सतवीं दा दिन सी धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे आगमन दा, प्रकाश उत्सव दा, ताईं रात एक रोड़ा जलाली करके फकीर आया, उसने सारी क्यारियां विचों फुल तोड़ के ले जाण लगा, सोइना मोइना ने जदों ए वेख्या ते चरण पकड़े, आख्या ए फुल तेरे वास्ते ने, ए फुल असी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वास्ते सजा के रखे। तां ओ कहण लगा जे मैनू फुल ना दोगे तां मैं तुहानू श्राप दे के जावांगा। कंब गए, गश खा के दोनों डिग पए, सर्दियां दी रुत है, दोनों दी लोथां बाग विच पईआं। जदों सवेरे रोड़ा जलाली फकीर फुलां लै के गुलदस्ता बना के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे चरणा विच पहुंचिया, अज पौ सतवीं दा दिन है, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा जन्म दिन,
ਸਾਰੇ ਪੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਆਖਿਆ, ਉਹ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਜਲਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਪਲਾਲੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਇਨਾ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸੋਇਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਤੇ ਮੋਇਨਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਲ ਲਿਆਓ। ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਹ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਿਆ ਸਾਈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ, ਫਰਕ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਕਾਰੇ ਕੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ

सासत सिमृत वेद चार मुखागर बिचुरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खटकर माते दुगुणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जान राज मिलख सिकदारिया धन जो बन बिस्था बाग सुहावे सोहणे चले हुक्म अपार

गुरु नानक दा रूप बनाया, गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

नानक आख्या गुरु नानक प्रगटिया राय पोएंदी तलवंडी विच आप नारायण कला तार जग में

अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई तन हो गई। सात सगत बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायों

प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि अज अज

हरी परी है। ओ कहिंदे नहीं मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, चलो मेरे नाल। ते सारे जदों इकट्ठे होके उत्थे पहुंचे

हर जस लिखे बेअंत सोहे से हथा चरण पुनीत पवित्र ओ बड़े पवित्र चरण ने चाले प्रभ पथा जेड़े प्रभु दे पंथ ते प्रभु दे मार्ग ते चल के जाते गुरु के दर तक जेड़े लेके आउंदे बड़े पवित्र चरण ने।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना कर दी हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने